ताइबं युम्थों खुदिंदा युम्लेन काचो यारी भी युम्दा लेरे युम्लेमा लम्दा लेरे लम्लेमा लांगों सायों यांबी लेमरेल सीदबीमा इकोक नून खुरुम जरी अहिंग्या मंबलोई करे अयुकी अंगानबा यौरकली।

0: मैं अपने मग आई खुरमचरी
1: आई मुंगो चिंकाई नंग योरक त्री आई दिन आई कोई मैं हाईवेर मिनिन है
0: आ नशी लोग थक दो रीबा मसू की परासी का मरी लेने ना बकरा सुम थीजरू बदगी कितन थेंग दो करे मैं अमारू बिनु को
1: वारों दे वारों दे वारों दे
2: हाउ ना नब तुम ताऊ रसी ने
0: मैं हम शेनी दा Adult Education Department, Government of Manipur ki makhada aikhoina paikhat chaba New India Literacy Program gi English ngani ga subna kuni thoidagina lishing ngani ga subna kun tare thawu gi manungda aikhoina mipum ting na iba paba henna bagi lokhat sarai ba thawrang se masi khumang yam sauna hoji phawu da di khoi sangsin jarak pana ayam ba saru si loshal le adana mayam puna mak iba paba khar khar de num haibira bu natro
2: haire haire
0: adadi ngasi mayam gi damak ta lokha jaga dori ba para si gi maming di ne makhal makhal gi masu sing masi gi hair ba para si no oi doi ba
3: adadi yam no ai do ba para mali
1: mali mali
0: yam no ai do ri ba para ni da lai sing gi marak ta adar gulab hai ba lai se masi मसू मखल क्या मुंग ले है देना लोग नहीं
2: चुमी चुमी अदर गुलाब मसू से ऐकोई सुपर याम उरे
4: उरे मोर पे याम उरे याम उरे
0: अदो अदर गुलाब की मसू ना थमोई की मपाउ पूब ले ओई बनी ना नुंग शिनु ओ ही वफम कर दिए नुंग यार कनी मसी की तो मत मयाम नहीं बोलते हम पीउ को
1: ए करी सुकाई दे बुंगो ऐकोई ने खंग ने ब ममू ता ना हेरु करीन तही कायरु ने बुंगो
0: याम नुंग आइजरे अदर आई हौजरे गे अदर गुलाब सिंह की मनुंग दा अंगांगो मसुगी अदर गुलाब पु याम न मगुल लेन लोंगने
2: ए अदर दी कई गिनो
0: आ मसे आइते मा थाजे न बिगी मतुंगिना कना गुंबा अमना अंगांग ब अदर गुलाब पिरक पतार दी थमोई सेंग न अमत अमत त याउदना आइन नंगबु नुसी जई हाइ बसे ताक लिबनि हाइद्र लोंगने
2: ए अंगांग ब गुलाब की मगुल जिदी
0: ಅದುಗನೆ ಅಂಗಪನಿ ಹೇ ಅದುಗನೆ ಅಂಗೋಬ ಮಸುಗಿ ಅದರ್ ಗುಲಾಬ್ ಪಿರಕ್ ಪತಾರ್ ದಿ ನುಪಿ ದೋ ಒಯರಗನ ಕರಿ ತಾಕ್ ಬಗೆ ಹೈಬಬು ನಂದಿ ಸತಿ ಧರ್ಮಗು ಕಿಜನ ಹಿಂಜಬಿ ನುಪಿನಿ ಅದುಗ ನುಪಾದ ಒಯರಗನ ಅತೋಪ ನುಪಿ ಸಿಂಗದ ಮಿಯಂ ಕಾರಣ ಚಂದವ ನುಪಾನಿ ತಾ ಇಬನೆ ಅದ ಹೈನೆ ಸದುಗು ಮನುಪಾ ನುಪಿ ದ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯕꯨ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫
4: ꯑꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ
3: ꯂꯩ꯫
0: ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤ, ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ, ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ
4: ꯌꯥꯎꯏ꯫
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫
1: ꯑꯣ, ꯈꯨꯕꯨꯡ ꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯗꯅ?
0: ꯑꯦ, ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯄꯟꯗꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯝꯍꯠꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ꯫ ꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯨ ꯆꯪꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯤꯡꯈꯩ, ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞꯀꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕꯣꯏꯅꯤꯡꯉ?
4: ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯛꯏꯗꯤ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯃꯝꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ꯫
0: ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯟ, ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ꯫
2: ꯑꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯦ,
0: ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞꯀ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯗꯔ ꯒꯨꯂꯥꯞꯀ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫
1: ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯒꯨꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯤꯗꯅ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣꯟꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤꯗꯤ꯫
0: ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯨ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯦꯝꯅꯁꯤꯔꯥ?
1: ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ, ꯁꯦꯝꯅꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯁꯤ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯑꯍꯟ ꯍꯦ ꯍꯦ ꯍꯧꯅꯕꯅꯤ ꯏꯄꯨꯟꯗꯣ ꯑꯁꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯎꯕ
1: ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯕꯇꯥꯔꯕ
0: ꯍꯧꯕꯇꯥꯔꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯟꯗꯤꯅ
1: ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯨ ꯉꯥꯏꯗ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯑꯁꯪꯕ ꯐꯥꯎꯅꯥꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯎꯕꯗ ꯋꯥꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯅꯤ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟꯗꯧ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ
4: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯍꯣꯏꯅꯦ
0: ꯏꯃꯥꯟ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯎꯗꯅ
4: ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯉꯥꯡꯁꯪ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯅ ꯐꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣ ꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯇꯌꯥꯜ ꯅꯪꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯗꯀꯣ
0: ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯇꯩꯃ ꯃꯦꯝ ꯆꯧꯕꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ
2: ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯈꯩ ꯒꯨꯂꯥꯞꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯒꯦꯀꯣ
0: ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯏꯇꯩꯃ
2: ꯐꯥꯏꯔꯦꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯪꯕꯥꯟꯅꯔꯕ ꯇꯤꯌꯥꯗ ꯉꯧꯔꯣꯛ ꯉꯧꯕ ꯂꯩꯆꯤꯜꯅ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯈꯣꯡꯕ ꯆꯜꯂꯤꯌꯦ
4: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤꯅꯦ

ताबिरे अतोप मंगालदा मखल मखल गे मचूसिंग थोरमस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट ऑफ एस ई आर टी की तिंग बांग लुनना पुथोक चबने आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मुगलान थुक चरी नाहरोल गी खुंजेल

गीत थोड़ा मस्त गया निशुभ खुदोलोई ना खुदोल तमजरी अरिजीत सिंह मित ब्रो समदी खुशबू की अपुन बकोंजल दा इसे मा

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो जी ना
0: हाय तराम नो चरी
1: आओ मामा से आ हाय कितना हाजिर नहीं दे रहे तो अपनी फोन जी फंग यंग वाई बा
0: हाय मिंग ले फंग हन हाय बी
1: फंग जी ना तो आई जी फोन तो बुझे हाजिर दे अरे ना आई जी ये दो से आम पाम जब मीने आनो ची जब मीने ये ना अरे ना आई जी ले फंग जी सोम लंग खड़ा ले तो ये मिंग ना आ कोई
0: इमागी मिंग तो अमुक तंग हन हाय बी
1: आज मला है बा
0: रास मला
1: Asmala.
0: Hoi. Gaswani Infalgi Thoram Sida Taram Nuk Chari Karam Bawa Fong Phong Tuk Pigani.
1: Hoi. Kanun ni dina. Hoi si. Matam sigi irang sina, lang sina, isa isa puno sida. Oi na. Nen man ta dina. Oi na wana rava ni. Ado. Mas sida buko. Iman hain ni si. Hoi liba. Isa isu. Mahin sa liba. Isa isu sin si.
0: I don't know. Kunaya masih irai lain namut lihai dengan sumayam. Kang minaraga lahir bawa fom mama suai re dengan mama.

0: हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मेडम
0: गुड आफ्टरनून तराम डॉक्टरी मिंग लाइफ हम हाई भी हो
1: हाँ मेडम मैं तो जरा इसे सुनीता खुराई गम देगी ना मेडम
0: होय सुनीता खुराई गम देगी तराम डॉक्टरी करी करन बाव फम पंडो पी कनी
1: हाँ मेडम मैं इन्हें थम देने लग गया
0: होय
1: तो ये पी होय बुझे मेडम राम ना एक्शन ना किसे तक आता हो रहा है मेडम को अरे सुनिंग बादी समस्या तो दो दिन आए थे ना
0: मैंने
1: हज़र नहीं बना कोई सुनिंग या ना चला तो मैं याम नहीं हूँ बदन नुमाइ तो बनी जो मुंह हज़र दे को मिला
0: है मैं याम पुनर ले मिना बा
1: मैं याम ना आओ ये बदन नुमाइ तो बनी जो नुमाइ जो दे को मिला को
0: मैं याम पुनर कुंडा दना ले मिना बा मैं पम्मा ओए बनी ना आई इसा इसा कक तंगी खन गुम्सी अयेंग बा अदगी लेरीबा मयाम सिना सुकरी खन खिगदगी हैब वखलोन दुदा खनथरगा वखलोन सि फजना खनबिरगा फिरोन सि सेचा से हैबी बने
1: आ मैडम
0: होय
1: अदवा अमना मैडम आइ जे अनुवाय जदा पा मन को नहान दगी ये जे तुम नमिपुदी आ छोरे न खलगा तुम हाइनिंग बा वहाय अम खतंग नरांग पोलगा मन के पोखती हि बको मैडम आइ जे नरांग जे खना खना दिनम जब ने दो कोगे टाइमिंग जे मजुन में याम याम बनी ताना दबा हाई तार को
0: होय
1: हम जुम फोन दे जो दम जाके रे कोई की आ अंगांग अमना अंगांग जे पोपी सो पिक करे अब माय जी मा पियो न कप दो ने रा मामा दो नन तो नमा दो हम ने पा मदे तकले का न हाय दे दे रा अबे दे अनुवाय तब को ने रा
0: होय
1: अब से कोई मामा हो जी जी ना ता जी जे कोई न पा जे वो तर गत ने रा
0: आई
1: पूरो ही बगी मुखला दर जो इच्छा अनि ये हमारी है उनके नदी की मेहनत खल लगा उन चीजें सुन ले बजे दम ये नहीं जमी रा अब यार कोई नुकी वही बिजी सुन ले सुन बगी वक्त लो लम जे नुपा जे युते ताता है आज ने वक्त लम लम द देश को मगा दुमाना तो वो निकोंगा इस याव वे बने रा अब हम ते लंदन की कोई नुकी वही बिजी की ना आय जी चाहे कोई बगी आओ आवन नुमाइ गा है बस दिल्ली लोग जिला जिसे लोई न तब लगा ना तने में था अब इशारा दिखा लगा इशारा पता बना चाव बंगा गा इवा पता बना ची बंगा गा ना मैं आम हल्ला मुझे जो है ठीक होने रहा
0: होई
1: नसीब जो कोई लंदन जी में तीर जिसे जिला ऐसी शालिंग जी की कोई नहीं खल लगा ज्ञान ताना आवन नुमाइ ताना लगा अरे लेता ये ले में तारे में रहा तारे चंद में तारे को
0: नुकी
1: नुकी ना ये नुमाइ का किसी वो तो था तो हमारे ये निपान के मज़िम बना ये बन लगाए नहीं हाय ना लोग इतना ये ना क्यों मैं बुकरी मत में
0: होय
1: दोस्ती जंग ये हाय तो नहीं बना तुमने डांस तो जरा कोने में
0: डांस सुगम बा थमोई का बा थाउ दो का मैं है उबो मत तमसिदा कोनाई सिगी नुपी ओई बिसिंग खक्तना थमोई कायरम गनी हाइबदी थाजा जदे को सुनिता नुपा सुयांग ना अदम कायरम दुइने बको हाइबदी नुपा खुदिंग मा माना बदी नते होय नुपा खुदिंग मा माना बनते इमुंगी अदगी इचाई सुगी इमुंग मनुंगी खान ब नुपा सु मै आम मा लेरम दुइने बा अदुगा फत्ता ब खर खक्तना तौब सिंग दुदा मदुदै दुदा नुपी सिंग वखल थेन बा हाइबतारे नुपी वखल थेन ब खर न सो मुक फत्ता ब खोंथांग मुक थांगक बा मसिदा मयाम पुन्ना खंगमिना बा उमिना रक बस्तने ब थमोय काय ब थौदो मयाम मथो इसे अदुब युम पान मिना बा हाइबसे नुपा खक्ता गी थौदांग सुनते नुपी खक्ता गी थौदांग सुनते नुपा सिना गाउसन हरग लेरग नुपी नंग खक्तना थौदांग से लौ हाइबदि नुपी दु सुमी होइब गौबनि ने यार ओइ दुइने बा अदना
1: मानि मानि
0: अम्म खक्तना ज्ञान ताउ आइदि ज्ञान तार गे हाइबदि हदबनि ना मसी अनि पुना ज्ञान तामिना बा मचांगि हाइबसि सु थामजगे अतो पकरि वाफम सिंग फोंदोपि गद बलेरि
1: अम्म खक्तना हजाउ के को कोला मे हमले अदगे कोइ औजि बिसम ना हा कोइ सुम आइने सुम उजर ब खरा दो सुम हाइते के बमेरा कोई मने मकून दी मसाम मौजी दी सुम लू न तो जब हाई तारे को
0: होई
1: अरो ग ममौ सुम जिना दी ए हाई नीम जिना इको जिना नांग जे करी मनो वखन जे सुम अति नो लख खंत दी तब हाई तारे को मेरा अरे अपगी अथाना बहाय जे मते ले खुंबा अरे फतना बहाय र जो फबहाय जो अखै न नांग दी न पी दे खुम ने अरो ग अखै न नांग गान द मागी मागी पोलै बम चारिन दिना मामा ना हाजु कांदा अंगांग दिसो कोइ तो खुंबा दुमाना अंगांग बने जों मामा ना गामो खुंबो कजे दं जाओय बने दा
0: होय होय
1: अदुम बदि मामा ओ जिजिन ना मता न तिन तुम ने पुवि बजो कोंगा जे दं जाओ बने
0: होय
1: अदुम बदि जो दं ता बल ने तो रसन नुवा ज दं ने दा
0: होय
1: अदना आइ ना इने बोर खुंबो दना असि इसा दु नाइ मो दं खुंबो इने हाय बजे
0: ပါခင်ခံတယ်နော်ဒီဟာကိုသူတို့ဆံကြတာကတော့ဒီလိုမျိုးနော်ဟုတ်အငန်းဟိုက်ဘစီတီအပက်ပလေးခုံခုံပနီမွေဒီဟာနာကိမ်တခငငလာပနတပနီနာမွေနူရီဘာသူဤဘသောဒုတ်စင်ဒဒဟေနတမ်ဒွိနေဘာအဒနာမွေဒါအခွေနာဆမိုင်းနတောဘယာဒီဟိုက်ဘကီအက်ဇမ်ပယ်ဆေဆုံပွန်စီစီဒိစ်ဒါပီရပီရကဝဟန်တာရကဒီအဖဘဒုဒုံအွေကနီဟိုက်ဘီဘနီဝါဖုံဖဇဘမယာမမဆုပခတ်ပီရမေအတုပကောလာဒါချန်ဆမုပီဇဂေထာ

0: हेलो हेलो गुड आफ्टरनून तराम नफसरी हाय ताजरे मिंगलाई फ्रॉम हाइबियो
1: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕꯁꯨ ꯐꯪꯖꯗꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: मैडम कई गुमंदा सुमहाजनिंग बदो
0: होय सोई दना फंदो पियो गुड आफ्टरनून लेडीज की थावरमनी मिंग लाइफ हम हाई बियो
1: आई ने कोई रे बने हाइजनिंग बदी मयाम की होय ने अच्छा वो छांग अदगी सिमिनिस्टर कोई वो भी बसिंग ना अहम बदा यम छाओ ने थादा रे सिदो एस खसाबा हो गलगा अकनो तो रे लाइथो अबे अदुगा मथंगी द सुपर तो नंग खग पिबी रत्रे अतना दि नंग जु बंधानी ना याम न नतै जातन लै बसे मयाम असो अछांग ना अमुक्ता खना दिरगा इमा इबा ओइना अंगत थादा दिरा दि थाने ना ने दागनी थोंग दाइजे बने
0: होय होय मरी लैनबा सिंगना तारका सोइदना मकी थबक तोन थोक पिरक पोइसनो
1: होय
0: कई फोन तो बिर इसी की मिंग लाइफ हम होय मिंग लाइफ हम मुक्तन हाय बिरमो
1: हाय बाय बने रेडियो से
0: जाम
1: नुगाय नताय मामा जी ने आहु ग पंगम द थम द दम हिपन लय बको अदुना ने रेडियो याउ द दी तुम बसे आतरी अदुना अदुम ता दना खतना लीला ता दना लय या नाय जे अदुना ने मामा जु सुम छोल से सोना रेडियो से कुई न ताही के कोई न सुने भजा भजा बा पाउलो कया अदगी वारी वाखों अदगी असो अथांग न सु हायरक पा खोल पता बा पुंग न सिंग अदगी हक्षेन गी सु या न ता जे या न नुंगाई जे अदुना अदु मंगाई रे हाय दो बा बगु
0: आई
1: हा बगु यम छा बगी से दी असो वो सांगशिंग न ताबी दना इमा इता सक दना तंग दी थाता दिरक न बा असी दनी आई नने थोंग जिदा रेडियो थोंग जिदा हाई जरी से
0: हाई पुक्निंगी वाफम मयाम अमा दी फंग दो पिरे दो का कोल दो बिरक ली बा इमा गी मिंग गले फंग गदी हाई बिद्री
1: आई ने हों मंदगी ने दोन पात आना खांगे मम लाइरा तमू हाईरगा खांगे
0: हाई इमा तमुगा उनजदना पुक्निगी वाफम मयाम मसु फोंदोक पिरे अदुदि मथंगी कोलर मा धमुक चांस पिमिनासि
1: ओ याम फनी इदेमा
0: हय थाग छेनो
1: खांग ने अतव उको
0: दयु इमा सु पुनसिनुंग सांगना ना दयक्तना रेडियो गे थोरम सिंग ताबियो हाय बवा फम थमजरी थाग छरी
1: अ होय

धन्यवाद उजिता। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज शनिवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही रूप। ये पहला गीत सुनिए और आप अनुमान लगाइए कि आज का एक ही रूप कार्यक्रम किस गायिका पर आधारित हो सकती है।

श्रोताओं, आपने सही पहचाना है। आज का एक ही रूप कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर के गानों पर। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के आवाज़ में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से एक गीत। शब्द रचना शैलेंद्र के हैं और सुरों से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आपने सुना वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गीत, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान के हैं और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। आइए अब सुनते हैं सिलसिला फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में एक गीत, बोल जावेद अख्तर के हैं और सुरों से पिरोया है शिव हरी ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम एक ही रूप, जिसके अंतर्गत आप सुन पा रहे हैं पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर के गाने और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी।

अभी आप सुन रहे थे रुडाली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत, शब्द रचना गुलजार के हैं और संगीत से सजाया है भूपेन हजारिका ने। आइए अब सुनते हैं चांदनी फिल्म से लता मंगेशकर और बबला मेहता के युगल स्वरों में एक गीत, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है शिवहरी ने।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में रंग दे बसंती फिल्म से एक गीत, आवाज दिया है लता मंगेशकर और एआर रहमान ने।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घर की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: 건강기 더럼 따비래 아도마 더럼 따비리 바시 아카스바니 펄리
1: इंडोरामा कंपनी की शक्तिमान ऊर्जा हौ अमरी माही मरुम कुडी मुक्त सीजन ने बयारबा केजी अमा केजी मंगा अमरी केजी तरा बीओपीपी बैक अमरी केजी तरा की बकेट ओइन फंग बिगने संगम द केजी तरा मरी की चांगदा मखल कुडी मुक्त की माही मरुम अमरी बना मसिंग द सीजन ने बयाय चरा हुनबा अमरी था बदा नत्रका आहान बे इसिंग चन ब मतम दा पांबी अतुन मपाल सारकपा अमरी माही यालक ब मतम द सीजन ने गने मशीन पांबी सिंग दा मचंगोय बचेंजा कार्बन फंगले मरा कलहले अमरी पांबी की मसामउ फहले हेन मयोन चोंगल मसा मरें फंडोगल पोथोक पुथोक की चांग हेंगलहली लैबाते इसिंग चुपचन की चांग वांगहली मरमचना इसिंग हंथन चन बयाय लैबाते याउबा लैहाउ की चांग वांगकतहली सिजिनबियो शक्तिमान ऊर्जा फंगफम इंदोरामा की डीलर सिंग
2: मैखु काप्थोकपा फोगिंग तौबना डेंगी थेंगबा गमलोय
3: डेंगी हायरिबा वायरस अंथोखनबा लाइना मखलासी महिग याउरबा एडिस कौबकांग मखलमना चिकपदेगी नाहली कांग मखलासी अयुक नुंगथिलगी मतमदता अयामचिए
4: लायोंगसिंदी अरुंगकना हौबा कोक यामना कन्ना चिकपा सरु सयांग चिकपा मिटकी मनुंग थंगबा सरुक त चिकपा नाबा फाउबा माइंगक अमदि थबाकी सरुक त लाइथोकपा गुमना मपाक मपाक थोकलकपा सिनी
3: लाइना आसी ओइब्र खंगदोकनाबा रिम्स अमदि जेनिम्सकी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ता ई चांगयंग तौथोकपियु
4: लाइना आसी दगी नाथोकनाबा पामबैसिंदी
3: अचोनबा फुडित फिरोल लिपियु अयुक नुंगथिलगी मतमदसु repellent mosquito coil electric vapor mat na ching masing season abiu
4: season nadra ba hunduk tona thamba patra sing tayar sing chapu akai ba plastic cup kokta na chingba ising tungba ya ba polam sing thamdana ba hot na si
3: pau jinjeri ba directorate of health services amadi national health mission manipur
5: sairam college ki admission hojare Manipur University the affiliate tauba UGC na su recognize tauba Langjing achoba da laiba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management da BSc amsung MSc Agriculture Horticulture gen mission hojale akang nabashit machine ni ngasimula to naming chanchen bio ekhoi contact number 7641811242
6: लाखली बजुन की तारीख कुंथ्रा इंगागी पूर्णिमा लैबा पोपनुमित की अयुक पुंग तरुक तगी पुंग मापल फाउबा माइबम सागई की लैमा पोपम द लैबा इबुदौ इबेंदौ अपोकपा अपोकपी अनिगी मफम दा सागई चा सिंग ना खुरुम जबक लोइनाना लनथुम नि जबक की नुमित अदु थोकले मरमदुना माइबम सागई चा खुदिंग मकना सागई की हैरांग लैरांग अमदी ngamजब कच्चदुना थौनि जहौननाबा अपुनब माइबम सागई चौखलुप मणिपुरना पाउजेलकली
7: नोंगपोक थोंग हांगबा नोंगपोक थोंग हांगबा कबुई सलांग माइबा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कसम ट्रेनिंग एकेडमी ने सिंजदुना लागिबा जुन की तारीख कुनिपान लिसिंगानी कुंतरुक नोंगमाइजिंग नुमित अयुक पुंग मापन मखाई ताबा मतमदा कक्सिंग की लाइब्रेरी ऑडिटोरियम द नोंगपोक थोंग हांगबा हाइन मिंगथोनबा लकी कसम की प्रोग्राम अमा पांगथोक सरगनी इरेसा सिंग प्रोग्राम यौबीरनबा करियर सेंबिनिंगबा सिंगना प्रोग्राम की हेन कुप्थन खंगबीरनबा पाउजिनजरी
8: Sky Hospital na Manipur da heart attack line na bagi damag 24/7 emergency service pi duna lakli. Karigumba dom da heart attack ki layong hai badi ikang khangong dana thabak naba sorhon rokwa ba oithang pamom naba thabak lumba wantharak pa asina chingba singa si thengna bira badi thengtha bira ganu athupa matam da Sky Hospital da lak pi duna khwaidagi ena paraba experience lera ba heart specialist ka tana biduna kuina hingba yana bagi kudong sab lobiu Sky Hospital da makhal kayagi chang naina heart ki oiba layang liba services singdi EPS RFA for palpitation device closes of ASD, VSD, Amadi PDA, hole in heart, coronary angioplasty and stent implantation, pacemaker, ICD combo implant, balloon dilation of heart valves, open heart surgery, makal kudumak haibadi, coronary artery bypass, graft surgery, surgical replacement of heart valves, MVR, AVR, TVR, popadagi, heart ke ahubalerak pa angang sing asina singba singa sila yingli. Heart OPD timing 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Hena akopamaro ki damag Sky Hospital ki reception ga tanabiyu.
7: महू सादगी चनरक पलाइनिंग लाइसोल गलोइनना लाइनिंग थौसना माही सेंग होंगबगी थौरम जुन की तारीख कुनमापल इंगागे आहान बथानिल निंगथौ काब नुमित के युपुंग तरुक दगी नुंगथिल पुंग मरी फाउबा हयिंग खोंगबान उपोंग युमफम द लैब लाइनिंग थौसना माही संगलेन द पांगथुक लगनी लैबाक मरा तपना इंगन पाननबा कुनजाउ लैचाउनबा मदि इरमद मसिद पुन्न कुंदा मिनरी बा कांगलुप खुदिंगमक नुंगसी सानन लैननबगी सेंगबी सेंगबा हाइदुना लैबाक याइफनबा लाइनिंग थौद थौनी जबगी थौरम सिदा मियाम ने सरुक याबीरनबा लाइनिंग थौ सनामही टेंपल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी संदाम गंडराज ना पाउजे लकली
0: ताबिरिबासी आकाशवाणी फाले चथजरीब थौरम परेंग सिगे निमिदांग पोंग निपाल ताहनजगनी रेडियो लीला ओजा मनो अरुइबे शरुक लीला साने बिगदवना रशिया आई फोकस आकाशवाणी इंफाल औजिन निमिदांग पोंग तरे मखाई तारे मणिपुरी द पाउ ताबिरिशी

0: ကနာကနာလေးဘီဘဂေးမုန်ချီဘော ओ कना कना लगे तारे दियम ते नेंग थोक पिरो पोलम ते सिना जरम गे
1: आ बे मा आ तारे तारे तारे
0: ओ
1: अ ए करी नी नी बे मा करी ले रे
0: ताई फुंगो आई अमोरे गे पफम थंगना न फमिन न जवनी हंगाम पिरे गे साम त्रुक पुजर कनी ताई फुंगो
1: नहा नोंग मा हंचित लागे न हाइरम बनी ने अदु लाखी दरे अ परे नाम तेरे से हाउडो माली है अदु इबेमा मादी हाइदी नुपी मसा अमुबी दुदी मसा गंगम खिद्र बरा करी तो खला
0: मोरे दे सखी बनी ताई बुंगो नहा ला

0: 硬币哦，你硬币在不？
1: 哎，
0: 你硬币哦。
1: 那，你哪个现在 minus plus 路线了？阿达那 divided by 路，我们得来一共多不呐？哎，十黑加不的哎不哦？哈，我路努过呐。
0: 啊，哎，那我哎 low cholesterol， 我讲的马黑瑞维奇巴，冷片没得。我讲那马通加的冷片没得，够我那冷那脾气不多。
1: 哎，那可以 union 的 general secretary 卡卡维奇多哈。
0: 冷片没得，啊不不不，是冷片没得。
1: 硬
0: 不的，俺们硬个，还不的，该说还的，能行。राजनीति की नेता ओइनी को हायदरा लगने भी की बतो मतलब तो तो जेल लगा ले जरूर बतो
1: ओ ओ खंगे खंगे खंगे खंगे
0: सर इन्हें लोट न लग चली बिसे सम न है ता हाय जगे साइट तक कल्चर रसो थवाई जब जाने याव भी बसानी मियाम न सु खंगे बिरी बा इन्हें सु ये न खंगे
1: नंग इसी लम्हें लम्हें है वालों इसी मांग देने बतो सम न याम सम न वाह मचंगी सु मचंगोई न हाय न बला नो哈，硬不给我呢，硬死，还那个呢？哎，是我说硬的，那我那个诺婆也黑不？
0: 康姐，还这个，好几奴婢要哄你来的是，奴婢要哄，
1: 哈，奴婢要哄，
0: 哎，
1: 干哪个？干哪个？干哪一点奴婢要哄侬呢？咱们，男的喽，哎，的喽。
0: Sorry sir， 哎，这是我微信呐，哈，那好嘛嘞，还这个。अंत की चाहिए सिद्धगी नूपी या मक हल्ला का मना पी ना ना लेप ना रे कोई मंत्री ना हाँ हम ना कन ना होना बदगी पी बता रे
1: मना दिया शेला पीरा मिघेला
0: सर पेशानी लुपा लाग हम
1: हाँ लाग हम
0: होए चाहिए हम हम काना रगा पी के दमने खरे ले रगा लाग मंगा आधा हिंकन ना बा होना जगनी सर मतंग दी बजे ताहाब ना बताऊ जरा नहीं अंत की दी कोई मंत्री तरा ले रिबिश देगी अमामम देगी लिशिंग यंग कई खाई ना पा मकोई मकोई की फंदे की मान मान थोक पा पी बता याना रे लाग ली बच्चा ही हो बन नुमित सिदा पी के दम निशा
1: ओ अजु दी करम करम मियो इधर पी के दबा
0: अशिंग बा चनु अमदा पी के दबा ममिंग शु कंगले चनु मना थोल बनी मशी की सिदा सार ना नुपी चनु अमा खंबी वो शिनी सर
1: हाँ के आई बो
0: है
1: आई दे नुपी जो थी दे नुपी जो लेट दे पाखंग नी पोक पति की अमुक तल होंग जाते री बा है नुपी का मरी ले नहीं दबो पाखंग नी काम दो ना इन खंड दो इन लोन है
0: सर समय ना तोड़े अरुण बोए ना लम लम मफम मफम दगी नुपी चाम है ना थगले अखंग है कंगु ना मथंग मथंग सुम खंगलक पना हुजिक खुट ले री बसे अहुम आइने सा है जगी बदो अहुम मसी दगी अम खंगन न बलांग न बदनी मोंग म ओ गिदना मथंग मथंग काइन रक्तना सरकार फावबा सगा काइबगी वा लाख पद यान लेरबा मनागी कमिटी ना मुन्न खनर बतुंग द सार द सिनबा हायदना लेबना बदगी ऐ लोट ना हेत लक्षरी बिसन या बिद बियाद रमी कुसा जे नुपी अहुम दुगी छे सांग छे दै द ले जरे सा असे मना पी बगी नियम न चिंगबा कुप वारो पुंबा थेंग न बिरनी सिदा ngशी गा हयेंग गा येंग बिरो अ हंगचित नुमिदांग सुंगै ऐ अमुक लक्षरी के सा मशेम कमिटी द पुथोगा हेत लाउथोगे खंजरे सा अवामन मतिक चांग नहीं पूछ रखे नहीं ऐ ऐ चचा रखे सर
1: ऐ ऐ कौन है ना कौन है ना वो मंत्री नंगो ऐ लंपियन ऐ
0: नाइजर रोय कंगले ये वो एक बन पी चनुरा हम पुत्र पीपी रो हम चीन एक ता ऐ ऐ चचा रे
1: हाय ये सब क्रेन है इश हाय के दवा हंगे दवा मयाम हम ले होगी Oh, pan teng ini saya ingat. Nungdang kuding tumbuh ya dah ba, tunggan dah bu oleh bani ini saya. Amahagi amahani, nasi dia masih paraga, karino hadu ayeng lagi. Kanglay senu ama, kana kana kanglay senu oleh gaba. Pirak liba. Nupi ahum masina, ahan ben nupi usna kana. Pilot, Captain Saroz, nupi pilot. Lamdam sigi atang senu ama. Police officer mapab, mama na college ki principal oyram, thabuk tigi botharab. Mabung na. Canada thabuk tawriba masa na picnic de gi de leida laik tamna pa mama mapa na doctor tamhaning ba mabumna civil services parikha tahning ki ba aduga masa nu pamjaba pilot oi ki ba iram da masigi ahan ba nongpok bharat ki ahum suba nupi pilot aruba achik asha singman gi lamdang da pai bada hai singthan ari ba captain pilot saro hey ai bu kangre da ma ga wari wa tai tong na kre leba gi thodo wa thokre da su oi yom na kre sumi sumi sumi ya ma gi photo si si de lei ren ain kangkim se adun jing lembi le shabi tabuk pota ga de bukui de bi ma gi ma hei ma sing hai sing ba gi ma ko thong ba gi ji za ma yam si di ya mi hei ire ba iram nam ma si gi sau thok cha ba ya bi nu pi ni chum atang gi nu pi ni mathang shina kana oja kalyani lairikta makok de oirapi honaba kanbi nupi oja mathang mathang oirak laga school lamagi oja makok oina thabak te pothare takbi dambi bada hai sinna laina takbi damak laiwang sakhangne yam kanna natrabasu ngangan jegelli mapuroi bana heart ki doctor masa ahung gi manung da amana angang yai fellowship da awang ba pham pai ri amana mai pak pa ukil oi ri samaz da maru oi na nupi gi da makta kana ra ba lai ri kaya i khre i ri mana ma di ming thol kaya kaya pham khre sumi namdamashigi achangba atangba nupini mashabu apaba miyamam oinanaba shemba haibashimak apaba nupiyami mamamagi jawlaba thawdaan oja kalyani atangba nupini matang shina kana ohum subi nupiyashibu imaming thol na ikai khumneri bi tembi ima tembi special contractor oiramba gopal gi amat to pokche bi macha angang oi ngai de gi leba miang gi iho kaya da mangjin than yor labi hojik phaw bu su thona phana hanna hanna mangjin thari bi miang gi lusing bi makhasidi masanu pa atun bagi yumseng badu laiba ki konunda pangthok kadaba wakat mi phamma malu singa daba laiba na kuina yawram khide nurse anina kupsen chenarega plane da paihan ki hajuk phawba laiba ki achou ba thodang gi damak tau ki ba thodo ase wari nari thagat nari mani mani thagat pam ya ban pi ni makoi ahum mukshi matik chabi nupi ngakdele adubo kanabu lokthok laga kanabu khangadaba aigi kanglai shanu amati ai khanbatai lukhalu khrabawayenda sapchana afabawayen puthokhiba aini kanglai shanu amati khanbatai Asheng ba kang lay siya doon.

किशोर कुमार साहब की आवाज थी और इस गीत के लिए कह सकता हूँ कि इस गीत के दो वर्जन हमारे सामने देखने को मिलते हैं और दोनों के दोनों गीत कमाल के, एक रफी साहब की आवाज में और दूसरा किशोर दा की। फिल्म का नाम था प्यार का मौसम और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक रहा आरडी बर्मन साहब का। आरडी बर्मन एक ऐसा नाम या कहूं हिंदी सिनेमा का एक ऐसा हस्ताक्षर जिनके गीतों को आज भी हम कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर देखते ही देखते हैं, फिर वायरल होती रीलों में या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी विज्ञापन में। हाँ, हमारे दिल में ये नाम तो बसा ही हुआ है। प्रोग्राम का अगला गीत भी पहुंचाता हूं आरडी बर्मन का ही कंपोज किया हुआ और कोशिश करेंगे आज पंचमदा को याद करने की उन्हीं के गीतों से। कहां? यहीं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर, प्रोग्राम हर सिंगार में।

रफी साहब की बात करूं तो रफी साहब का जो साथ रहा पंचम के साथ वो शुरू हुआ 1961 के करीब और पंचम दा का ये सफर खूबसूरत गीतों की लड़ी के तौर पर याद किया जा सकता है और ये साथ जब खास तौर पर रफी साहब का रहा, रफी साहब के बनाए हुए या तैयार किए हुए उनके गीतों को जब पंचम का साथ मिला तो हम कह सकते हैं कि उन गीतों में एहसास, जज्बात और प्यार मौजूद रहा। फिर चाहे आप इस गीत को ही उठा लीजिए, रिलीज तो हुआ था ये 1968 में, लेकिन आज तक यानी 2026 तक ये गीत उतना ही खूबसूरत, उतना ही तरोताजा महसूस होता है।

लता मंगेशकर की बात करूं तो लता जी के सामने तो पंचम शॉर्ट्स में घूमने वाला एक नॉटी लड़का था, लेकिन इसी शरारती लड़के ने लता जी के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गीत तैयार किए। दादा बर्मन यानी कि आड़ी बर्मन साहब के पिता, उनका और लता जी का जैसे कि हम जानते हैं एक ठीक ठाक समय तक थोड़ा सा मन मुटाव रहा, जहां पर के गीत उन दोनों ने साथ मिलकर कंपोज नहीं किए, गाए नहीं, और ये जो बर्फ थी वो टूटी पंचम की वजह से। छोटे नवाब वो फिल्म रही जहां पर पहली दफा आड़ी बर्मन और लता जी ने साथ मिलकर काम किया, और उसके बाद तो बस ऐसा लगता है कि एक से बढ़कर एक गीत तैयार होने बस अभी शुरू हुए थे।

छुटपन वाले पंचम दा के लिए पंचम बदमाशी छोड़ दो लिखने वाली लता मंगेशकर जब पहली बार छोटे नवाब फिल्म के लिए गाती हैं तो वो कमाल का गाना बनकर उभरता है, निखर जाता है और जो गाना हमें अभी सुनने को मिला, फिल्म का नाम था छोटे नवाब। 1961 में ये फिल्म आई थी। ऊपर से इस गाने की जो खूबसूरती है वो है इसमें घुला हुआ राग, राग मालकुंजी।

पंचम दा को गुजरे हुए तकरीबन 32 साल हो चुके हैं, लेकिन देखिए ना, पंचम कभी गुजरते नहीं, वो रहते हैं मौजूद अपने संगीत में। फिलहाल थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन बने रहिएगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The Ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the Defence Minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for two major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of the projects, the minister said that the facilities would manufacture advanced multi-layer printed circuit boards, PCBs, one of the most critical components of modern electronic devices. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra today issued a statement on this issue. It says the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed that an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. The fragile ceasefire brokered 2 weeks ago to end the four-month conflict in West Asia is under mounting pressure after fresh retaliatory strikes between the United States and Iran over the past 48 hours. The latest escalation began on Thursday with an Iranian attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, prompting a U.S. response. Both sides accuse each other of violating the interim agreement, raising fears for ongoing diplomatic efforts. Bahrain reported a drone attack today, calling it a flagrant violation of its sovereignty, while a strike was reported near Erbil in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatea area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in U.S. tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in U.S. And that is the end of this news bulletin.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:12 हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ मैं विकास नमस्कार

जा चुके हैं. ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फोक सॉन्ग हमारे सामने जैसे अलग अलग रंगों में सामने आ रहा है. जैसे लगता है कि रफी साहब दूर किसी पहाड़ी से अपनी आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं. प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया कि शुरू हो चुका है. गीत मेरे मनमीत और आपके साथ मैं विकास हूं. और फिल्म जो अभी आप तक पहुंची यानी कि जो गीत था वो था प्यार का मौसम. इस फिल्म से 1969 की ये फिल्म थी. मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत लिखा हुआ और रफी साहब और लता जी की आवाज थी. अगला गीत पहुंचता है आप तक 1989 की फिल्म से. फिल्म का नाम है परिंदा और प्यारा सा गीत है आशा जी की आवाज में और साथ निभा रहे हैं उनका सुरेश वाडकर.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:35 हो चुके हैं. आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत. आपके साथ इस सफर में मैं विकास. पंचमदा की कंपोजिशंस आप तक पहुंच रही हैं और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे और पंचमदा की कंपोजिशंस का सबसे ज्यादा अगर फायदा देखा जाए तो वो आशा जी को हुआ. हो सकता है वो इसलिए भी क्योंकि आशा जी उनके स्टाइल के लिए सही आवाज रही. लेकिन लता जी एक जगह पर कहती हैं कि पंचमदा ने उन्हें वो गाने दिए जो वो उनके लिए सही समझते थे. और उन्होंने एक जगह उनसे कहा कि जो गाने मैं आपको ध्यान में रखकर कंपोज करता हूं वो गीत मैं कभी भी आशा जी को आगे भेजता नहीं. और वाइस वर्सा यानी ठीक इसका उल्टा, जब मैं आशा जी के लिए कंपोज करता हूं तो वो गीत मैं आपको नहीं देता. और इस तरह लता जी के पास रहना बीती जाए और बीती ना बिताए जैसे गीत गए.

पंचमदा को वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद था ये संगीत और उन्होंने अपने संगीत में उसे भरपूर जगह दी, एक्सपेरिमेंट किया, कई देशों को जब जब घूमा, वहां के इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लाए और उन्हें अपने गानों में आजमाया भी। लेकिन तबला और सरोद बढ़िया तरीके से बजाने वाले आरडी बर्मन ने कई सारी शास्त्रीय धुनों को भी तैयार किया। अगर मैं कुछ गीतों की लिस्ट यहाँ शेयर करूं, आपको बताऊं, तो शायद समय निकल जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गीत मैं आपके लिए बता ही देता हूं। जैसे मेरे नैना सावन बाधो, राग शिवरंजनी, राग तोड़ी का रहना बीती जाए और यमन कल्याण में बीती ना बिताई रहना, ये कुछ ऐसे गीत जो आज भी हम पसंद करते हैं, सुनते हैं और जब जब रेडियो पर या अपने घरों में हम इन्हें बजाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप उन गानों को गुनगुनाना न शुरू कर दें। फिलहाल घड़ी बता रही है कि विकास, अब तुम्हारे स्टूडियो छोड़ने का वक्त आ चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही थीं। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry has said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the defense minister's remarks, the ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the defense minister made the statement in question. A strong earthquake of magnitude 6.2 struck the Hindu Kush region of Afghanistan last evening at around 7:04 p.m. Indian time. Tremors were felt across India, Pakistan, China, Tajikistan, Uzbekistan.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम जो कहानी आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंजलि और इसे लिखा है रश्मि रविजा ने। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। अंजलि बहुत कुछ करना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसकी जिंदगी एक जगह स्थिर होकर रह जाती है। वहां होती है निराशा, वहां होता है गहन अंधकार, लेकिन उस अंधकार में हाथ थाम कर जो उजाले की ओर लेकर चलता है वो होता है सच्चा दोस्त। कुछ ऐसी ही रूपरेखा है इस कहानी की। आइए सुनते हैं पानी पर लिखी कहानी अंजलि।
1: साहिल दौड़ता भागता प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार अंजलि ने उससे कोई मदद चाही है और वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अंजलि परेशान हो जाएगी, ऐसा ना हो वो अकेले ही चल पड़े। पर आज मन ही मन भारतीय रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया। आज ट्रेन के लेट होने से खींच नहीं हुई बल्कि सुकून की सांस ली उसने। एक नींबू पानी लिया और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी। अंजलि उसकी छोटी बहन साक्षी की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर साक्षी के साथ अंजलि भी घर पर आया जाया करती। साक्षी जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी। अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अंजलि भी उससे डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती तो वो भी रौब जमाने के लिए जोर से साक्षी को किसी न किसी बात पर डांट देता। साक्षी सहम जाती और अंजलि जल्दी से अपने घर चली जाती। जब साहिल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो अंजलि का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने साक्षी को समझाया।
2: सारा दिन खीखी करके घूमती रहती हो, इम्तिहान पास आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी?
3: हाँ भैया।
2: इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती ना करो। अरे उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है, दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है।
3: अंजलि बहुत अच्छी लड़की है भैया, घमंड तो जरा छू भी नहीं गया है। बहुत घुल मिल कर रहती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। सब पैसे वाले खराब थोड़े ही होते हैं भैया।
2: जिससे चाहो दोस्ती रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमीर सहेली की देखा देखी कोई ऊट पटांग मांग न कर बैठना।
3: ठीक है।
1: अब साक्षी उसके सामने कभी अंजलि को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने अंजलि को देखा नहीं और वो भूल गया। साक्षी कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। 2 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और साहिल उसे चिढ़ाए जा रहा था।
2: ये कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी फैशन परेड में? कॉलेज में पढ़ाई की जगह ये सब होता है? कमाल है, कैसा कॉलेज है तुम्हारा?
3: भैया परेशान मत करो।
1: माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा, तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की नीली साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलकें झपकाए देखता रह गया तो धीरे से बोली,
4: साक्षी है?
2: साक्षी।
1: और दरवाजा खुला छोड़ अंदर चला गया पर बरामदे से देखता रहा।
2: ये कौन सी सहेली है साक्षी की? इसे तो कभी नहीं देखा।
1: साक्षी साड़ी संभालती हुए कमरे में आई और चीख पड़ी,
3: अंजलि हाय, तो कितनी सुंदर लग रही है।
2: तो ये अंजलि थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो 2 पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई?
1: दोनों सहेलियां घर से निकल गईं और वो खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अंजलि ही थी। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में साक्षी से पूछ भी लिया,
2: वो अंजलि थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अंजलि से अब भी दोस्ती है?
3: हाँ, लो हमारी दोस्ती खत्म कब हुई थी? हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं।
2: ओह नहीं नहीं, वो कभी देखा नहीं ना घर पर।
3: वो तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर पर होते हो तो मैं अंजलि को लाती ही नहीं। और वैसे भी तुम घर में रहते ही कितनी देर हो, कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज। पर मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, बताओ बताओ।
2: नहीं नहीं, मतलब वो तो यूं ही पहचाना नहीं ना इसलिए।
1: पर अब वो अक्सर साक्षी से अंजलि के बारे में पूछ लेता, साक्षी भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती।
3: अच्छा भैया, वो तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं क्या? अंजलि के लिए ला दो ना प्लीज।
2: ठीक है, मैं ला दूंगा।
1: या कभी कभी अमुक राइटर की कोई किताब लाने को कहती, वो कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे साक्षी भी समझ गई थी अंजलि के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर जब अंजलि जब भी उसके सामने पड़ती

0: उसे पता था अंजलि और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब साक्षी ने ही बात शुरू की।
1: भैया, अंजलि की शादी की बात चल रही है। तुम भी तो कितनी अच्छी जॉब में हो। अंजलि बहुत बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अगर अंजलि हमारी भाभी बन जाए।
2: साक्षी, बहुत पटर पटर बोलने लगी है तू। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो अभी 4-5 साल तक शादी की बात सोच भी नहीं सकता।
1: क्यों भला?
2: अरे बहुत से काम निपटाने हैं, घर की मरम्मत करवानी है, रिनोवेट ही करवाऊंगा मैं तो पूरा। और हाँ, गाड़ी लेनी है। मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, और सबसे बड़ी बात तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है साक्षी।
1: पर तब तक अंजलि के पेरेंट्स इंतजार थोड़े ही करेंगे।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिजूल की बातें सोचना छोड़ दे। वैसे भी अंजलि को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए।
1: भैया, अंजलि वैसी लड़की नहीं है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी।
2: बेकार की बातें मत कर। अच्छा चल जा, चाय बना के ला। चल।
1: क्या

0: अंजलि उसे अच्छी लगती थी। माँ और साक्षी से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी आवारा गर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अंजलि कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आ जाती। साहिल को देखते ही अंजलि के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके बालों की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता।
1: इतना भी क्या घबराना, अरे इतने दिनों में भी उसने मुझे नहीं पहचाना, क्या अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ उसे? ठीक है।
0: एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया।
1: अब वो नोट्स साक्षी ने दिए थे ठीक थे ना?
2: हाँ अच्छे थे।
1: ठीक है। और वो मैं ये कह रहा था कि कभी भी कोई किताब चाहिए तो बताने में संकोच नहीं करना।
2: जी जरूर।
0: फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फायदा जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर भला क्यों कदम बढ़ाना।

उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अंजलि को खूब अच्छा घर और बर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। कुछ महीनों बाद सुना कि अंजलि की शादी तय हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और अंजलि उसी रास्ते से गुजर रही थी। अंजलि ने नजरें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नजरों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अंजलि नाराज है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अंजलि की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। साक्षी की तैयारियां जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब दो दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। अंजलि की विदाई के बाद ही लौटा। अंजलि का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा, अंजलि की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अंजलि के रंग बिरंगे कपड़े और दुपट्टे वगैरह सूखते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था, उसके मन के एक कोने जैसा। साक्षी से अंजलि की शादी की बातें, उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी के किस्से सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वो मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी अंजलि के लिए कि वो हमेशा खुश रहे।

0: साल बाद साक्षी की भी शादी हो गई। साक्षी की शादी में अंजलि अपने एक साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। माँ पापा साक्षी कब से उसके पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो। रोज ही माँ कोई न कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के गुण गाती तो वो बहाने बनाकर टाल देता। पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि साक्षी के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया। रोती हुई साक्षी कह रही थी,
1: भैया जानते हो अंजलि के साथ क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
1: उसके हस्बैंड।
2: क्या हुआ उसके हस्बैंड को?
1: He's no more.
2: Oh no.
1: हाँ भैया, अंजलि तो पत्थर हो गई है। आंसू भी नहीं बहते उसके, सारा दिन छत घूरती रहती है।
2: मुझे लगता है एक बार मुझे जाना चाहिए। अंजलि के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हाल चाल जरूर पूछते हैं। उनके इस दुख के समय में मुझे उनसे मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए, कल ही चलना तुम मेरे साथ।
0: अंजलि और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आ जाता। कैसे सह पाएगी अंजलि ये पहाड़ सा दुख? माँ को जैसी ही खबर मिली वे अंजलि के घर चली गईं। अंजलि को उसके माता पिता अपने पास लेकर आए थे। साक्षी भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी। सुबह होते ही अंजलि के घर चली जाती, रोज रात में रुंधे स्वर में अंजलि की दशा का वर्णन करती। ये सब सुनकर उसका कलेजा टूक टूक हो जाता। एक नज़र अंजलि को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ कह नहीं पाएगा, पर दो पल उसके साथ बैठेगा तो सही, अंजलि को इतना तो जता दे कि उसके दुख से वो भी कितना दुखी है। दूसरे दिन साक्षी के साथ अंजलि के घर गया, जी कड़ा कर गेट के अंदर प्रवेश किया। अंजलि की माँ बाहर वाले कमरे में ही अंजलि के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। साक्षी अंदर चली गई, वो अंजलि की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ उठी ये जानने के लिए कि अंजलि ने कुछ खाया है या नहीं। साक्षी का बड़ा सहारा है, अनय और अंजलि को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, कहती हुई उसे अंदर बुलाकर ले गई। अंजलि एक कुर्सी पर निस्पंद बैठी थी। साक्षी पलंग पर अनय को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अंजलि ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती ही रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी अंजलि ने। अंजलि की माँ ने साक्षी से पूछा, अंजलि ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ भर है। अंजलि की माँ ने ही दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। साहिल अपनी हथेलियों को घूरते हुए जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी बोल नहीं पाया। अंजलि खिड़की से बाहर देखती रही। अनय ही उसे शांत बैठा देख अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आंखों में नए सपने उगा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद साक्षी भी चली गई, पर वो सुबह शाम अंजलि को फोन करती और उसे भी अंजलि का हाल चाल पता चलता रहता। साहिल ने साक्षी से ही अंजलि को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर साक्षी का कहना था अंजलि बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर एक दिन अंजलि से वो मिलने गया।
2: अंजलि तुम एमए कर लो, देखो घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी बहलेगा।
3: नहीं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और पापा भी कहते हैं अभी रहने दो।
2: अरे लेकिन अगले महीने सेशन शुरू होने वाले हैं, अभी एडमिशन नहीं लिया तो फिर पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। जरा सोचो अंजलि, तब तक क्या करोगी, ऐसे ही दुख में डूबी रहोगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे।
3: देखो साहिल, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इतना है मेरे पास कि आने के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
2: नौकरी के लिए कह कौन रहा है, अरे वो तो बात की बात है, अभी एडमिशन तो ले लो। अच्छा फिर भले तुम यूनिवर्सिटी मत जाना।
3: मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं पढ़ना।
2: फिर क्या करोगी, यूं ही उदास बैठी रहोगी? अरे तुम अनय की तरफ देखो, तुम्हें इस तरह उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा? उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तुम्हारी भी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देखो बचपना छोड़ो, मैं एमए का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूँ। तुम इसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। देखो तुम समझ नहीं रही हो, जैसे मैं साक्षी को डांट सकता हूं ना वैसे तुम्हें भी। चलो चलो अभी फॉर्म भरो।
0: ठीक है। शायद अंजलि ने गुस्से में कुछ कहने के लिए सिर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से अनय को देख चुप हो गई और फॉर्म भरने लगी। साहिल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने साक्षी को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन साक्षी ही जबरदस्ती अंजलि को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अंजलि सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी, एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसी ही दूरी बनी रही। एक आध बार अंजलि के घर गया भी और पूछा,
2: अंजलि पढ़ाई ठीक चल रही है ना? देखो कोई जरूरत हो तो जरूर बताना।
3: हाँ हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी।
2: कैसी हो?
3: मैं ठीक हूँ, आने चलो देर हो रही है।

0: अंजलि ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास से एमए पास किया और फिर पीएचडी करने लगी। उसे ये सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर अंजलि आगे ही बढ़ती जा रही थी। माँ अब भी अक्सर साहिल पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब अंजलि को यूं अकेला देख उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। साक्षी समझती थी अब वो कुछ नहीं कहती। इस बीच साहिल को दूसरे शहर में एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और उसे दूर जाना पड़ा। अनय के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और अंजलि उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अंजलि को एक नजर भी नहीं देख पाया, मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, या तो किसी बहाने से एक नजर तो देख लेता। अंजलि की मनःस्थिति समझता था, इसलिए वो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। साक्षी के जरिए अंजलि की खबर मिलती रहती थी। अंजलि की पीएचडी पूरी हो गई और अब एक कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। कभी अपने शहर जाता और अंजलि पर नजर पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता, हालचाल पूछ लेता। अब अंजलि की आंखों में उतना गुस्सा नहीं नजर आता, फिर भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ जाती। पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता। वो अंजलि को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी। वो पहले अंजलि को अपने दुख से उबरने देना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि अंजलि को ये न लगे कि वो उसे कोई सहारा देने के उद्देश्य से ये सब कर रहा है। और फिर जैसे एक राह मिल गई, साक्षी का फोन आया।
1: भैया
2: हाँ?
1: तुम्हारे शहर के कॉलेज में ही एक सेमिनार है जिसमें अंजलि को भाग लेना है।
2: ओ।
1: हाँ, और ठहरने का सारा इंतजाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है। नया शहर है और अंजलि ने कभी अकेले सफर भी तो नहीं किया, वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुँचा देना प्लीज।
2: वो तो मैं पहुँचा दूंगा, लेकिन क्या ये सब अंजलि ने तुम्हें कहा मुझे इन्फॉर्म करने के लिए?
1: हाँ हाँ भैया, अंजलि ने ही फोन पर मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूँ।
2: ओह, तब तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा।
1: वो तो मुझे मालूम है भैया।
0: उसे रात भर नींद नहीं आई, ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब स्टेशन पर था। क्या पता अंजलि कैसे बात करेगी, अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों। पर एक तसल्ली थी, जब खुद ही साक्षी से कहा है तो वो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं।

0: रुकी वो कोच के सामने ही खड़ा था अंजलि गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी उसे देखते ही मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी
1: वेलकम वेलकम बैग उठा लूं अरे डर लग रहा है कहीं तुम नाराज होकर ये ना कहो कि मैं तुम्हारी हेल्प
2: साहिल नाराज होना होता तो तुम्हें इन्फॉर्म करती
1: तो चलें
2: इसीलिए तो आई हूँ बताओ कहाँ चलना है

साहिल ने बैग हाथों में लिया, अंजलि सहज रूप से उसके साथ चल दी। अजनबीपन की दीवार गिर चुकी थी, दीवार के पार उसे दूर तक जाते एक खुशनुमा रास्ते पर दो जोड़ी पैर चलते नजर आ रहे थे। उनके बीच कोमल सा कुछ उग रहा था।

वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार 1:10 पर गीत सुहाने मेरे यानी राखी के साथ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से 1 दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से TET प्रश्न पत्र लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ के सौदे में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maake Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Indian Navy's indigenously built survey vessel Large INS Ikshak reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said that the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. It added that the visit underscores the enduring maritime partnership and long-standing friendship between India and Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. The ship will also undertake community outreach initiatives, including medical camps and distribution of essential supplies, further strengthening goodwill and people-to-people ties between the two countries. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra today issued a statement on this issue. It says the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed that an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. Indian Coast Guard ship Akshay, a new generation fast patrol vessel, yesterday commissioned into Bharatiya Tatrakshak fleet at Goa. The Defence Ministry said that the ship reinforces the service's resolve to ensure safe, secure and clean seas while protecting India's vast maritime domain. Heat wave has gripped major parts of Europe as temperature records have broken in several countries including Germany, Denmark and Slovakia. The World Meteorological Organization has warned of major impacts to health, ecosystems, agriculture and labour. Germany yesterday recorded its new all-time highest temperature of 41.5 degrees Celsius, just a day after recording its hottest day ever. Capital city of Berlin also broke its temperature record with 39.2 degrees Celsius recorded at a weather station in Tempelhof. Berlin's public swimming pools had reached full capacity and police began spraying water cannons to cool people down. In Denmark, the Danish Meteorological Institute reported a temperature of 37 degrees Celsius in north of the city of Aarhus today, the highest on record since measurements began in 1874. In Switzerland, the Bessnau nuclear power plant took both reactors off-grid because the temperature in the River Aare reached 25 degrees Celsius, which is considered too high to cool the reactors sufficiently. Meanwhile, experts have warned that Swiss glaciers may lose vast amounts of ice due to the extreme heat wave across the continent. The snow and ice that accumulated on Switzerland's glaciers over the winter is expected to have completely melted by tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

डिटेक्टिव फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में. शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया मुकुल रॉय ने. जब मन शांत हो, रात सुहानी हो या सफर लंबा हो, तभी गीत दिल के सबसे करीब आ जाते हैं. इनकी सादगी, मधुर बोल और दिल को छू लेने वाले सुर आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने बरसों पहले थे.

0: बारिश फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और चितालकर की आवाज में. राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चितालकर रामचंद्र ने. पुराने गीत सिर्फ धुने नहीं होते, वो यादों का एक खूबसूरत कारवा होते हैं. हर गीत अपने साथ किसी बीते पल की खुशबू, किसी मुस्कान की गर्माहट और किसी अनकही भावना की मिठास अपने साथ लेकर आता है.
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम.

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। जिंदगी की भागदौड़ में जब मन कुछ पल सुकून तलाशता है तब यही मधुर नगमे हमारा हाथ थाम लेते हैं। इनकी हर पंक्ति हर सुर और हर एहसास दिल के किसी न किसी कोने को छू ही जाता है।

माया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला गीत था। इसकी हर पंक्ति में जज्बातों की गहराई थी और हर सुर में एक ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक उतर गई। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। ये भी उन्हीं गीतों में से था जिसने बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दिया और मन को भावनाओं से भर दिया।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

वक्त हुआ है 1:31:39 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फंटूश फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि टूटे हुए मन को दिलासा देने वाली एक सच्ची आवाज है। इस गीत के शब्द जैसे जीवन की कठिन घड़ियों में उम्मीद का हाथ थाम लेते हैं। जब मन उदास हो, रास्ते धुंधले लगने लगे और दिल भारी हो जाए तभी गीत बड़े प्यार से कहता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

आराम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। सदाबहार गीत समय की सीमाओं से बंधे नहीं होते, बरसों बाद भी जब वो कानों में पड़ते हैं तो वही अपनापन, वही सुकून और वही एहसास फिर से ताजा हो उठते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ गीत हमेशा दिल के सबसे करीब बने रहते हैं।

अदा फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। बहजाद लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। तलत महमूद की दर्द भरी आवाज में एक ऐसी नरमी, सादगी और गहराई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। उनकी गायकी में शोर नहीं बल्कि एहसासों की खामोश गूंज सुनाई देती है। जब वो किसी दर्द भरे गीत को अपनी मखमली आवाज में गाते हैं तो हर शब्द मानो दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में. राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने.

0: जब प्यार किसी से होता है फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए
1: ये चीज खास मैंने उस अंजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं

देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की दो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा, राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्ताए जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry has said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The ministry has said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The ministry said that this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team, SIT, to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The Chief Minister also spoke to School Education Minister Dada Bhuse and Director General of Police Sadanand Date, directing that the strictest possible action be taken against all those involved in the racket. The move comes after Bhiwandi Police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting three alleged members of the racket. According to the police, the accused had brought the TET question papers from Delhi and were allegedly preparing to sell them in a deal worth around 1.5 crore. Acting on a tip-off, the police laid a trap and apprehended the three accused before the transaction could take place. The arrested men have been identified as Rajiv Shaw and Akash Kumar, both from Bihar, and Dheeraj Singh from Haryana. Police seized mobile phones, cash and four sets of TET question papers meant for today's examination. Following the incident, the Maharashtra State Council of Examination postponed today's TET examination. A revised date for the test will be announced later. The 353rd coronation anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj was celebrated with traditional fervour and devotion at Raigarh Fort yesterday, in accordance with the Hindu lunar calendar Tithi. The coronation anniversary had earlier been commemorated on June 6 as per the Gregorian calendar. Addressing the gathering, Deputy Chief Minister Eknath Shinde said the Maharashtra government is guided by the ideals of Chhatrapati Shivaji Maharaj and reaffirmed its commitment to the conservation and deployment of the historic fort. The fragile ceasefire brokered 2 weeks ago to end the four-month conflict in West Asia is under mounting pressure after fresh retaliatory strikes between the United States and Iran over the past 48 hours. The latest escalation began on Thursday with an Iranian attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, prompting a U.S. response. Both sides accuse each other of violating the interim agreement, raising fears for ongoing diplomatic efforts. In FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US today. And that is the end of this news bulletin.

0: वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ
1: सा रे गा मा
2: तुम भी गाओ

भ्रष्टाचार फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये रात सुरमई है, चांदनी की हल्की हल्की चादर धरती पर बिछी है और हर तरफ एक मीठी सी खामोशी पसरी हुई है। ऐसी रात में दिल अनायास ही किसी अपने को याद करने लगता है। कुछ अनकही जज्बात, कुछ मीठी यादें और कुछ पुराने गीत सब मिलकर इस रात को और भी हसीन बना देते हैं। सच्ची तो है, सुरमई रातें अक्सर दिल की सबसे खूबसूरत कहानियां अपने साथ लेकर आती हैं।

बीबी हो तो ऐसी फिल्म से आपने गाना सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में. अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. जब दिल किसी पर ठहर जाता है तो लाखों चेहरों की भीड़ में भी वही एक चेहरा सबसे अलग, सबसे अपना और सबसे खास नजर आता है. शायद यही मोहब्बत की सबसे प्यारी पहचान है.

तेरी मेहरबानियां फिल्म से आपने गाना सुना अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में. इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, माफ कीजिएगा, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. कहते हैं प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, हो जाता है. यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है. ये ना किसी वजह का मोहताज होता है, न किसी हिसाब किताब का. कब कोई अनजाना चेहरा अपना सा लगने लगे, कब किसी की मुस्कान दिल में घर कर जाए, इसका पता ही नहीं चलता. इसीलिए तो कहा गया है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है.

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां दो दिलों के बीच की दूरियां मिट जाती हैं, फिर धड़कनों की आवाज भी अपनी और पराई नहीं लगती।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 27 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुरभि सक्सेना के साथ तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किस्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

इशारों इशारों में ये हुनर अपने आप ही आ जाता है जब मोहब्बत हो जाती है। और जनाब, रात जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही तेरी यादें करीब आती जाती हैं। दिन की भीड़ में तो हम खुद को संभाल लेते हैं, मगर रात की खामोशी हर बार तेरा ही नाम पुकारती है। काश ये फासले भी रात की तरह गुजर जाते और सुबह तेरे साथ होती, तेरे नाम होती। और ऐसे में अगर वो शक्ल, वो मासूम सी शक्ल याद आ जाए तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। सच्चा प्यार सिर्फ किसी का हाथ थामने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों, खुशियों और मुश्किलों का साथ निभाने का नाम है। जब रिश्ते भरोसे, सम्मान और अपनापन से बनते हैं तो जिंदगी का हर सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो प्यार बांटते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, निकले हैं दिल से मेरे यूं अरमान देखना। भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, वो भी है मेरे हाल से अनजान देखना, निकले हैं दिल से यूं मेरे अरमान देखना।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में कल आज और कल फिल्म का ये गीत। चलिए सुनते हैं हमराही प्रोग्राम में सुरभि के साथ।

मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे। मुद्दतों तरसा हूँ मैं तुझसे मोहब्बत के लिए, ख्वाब में आके मुझे यादें वो पुरानी दे दे। तेरी राहों में बिछा रखी हैं पलके मैंने, मेरी आंखों को मसर्रत का तू पानी दे दे। मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे।

और इसी गाने के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य

0: भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए के तहत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लीनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता है। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2,000 से ज्यादा चार्टर उड़ानों के जरिए 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान की गई जिससे चारधाम क्षेत्र में सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर कनेक्टिविटी मिली। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी चलने की आशंका प्रकट की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार। जिंदगी का हर नया कदम अपने साथ नई उम्मीदें नई खुशियां लेकर आता है। हर शुरुआत खास होती है क्योंकि वही हमें नए अनुभव नई मंजिलों तक पहुंचाने का रास्ता मिलता है। इसीलिए डर को पीछे छोड़िए, दिल खोलकर आगे बढ़ते रहिए और हर पल को मुस्कुराकर अपनाइए क्योंकि खूबसूरत सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।

ये दुनिया उसी की होती है जो दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कुराहट और इरादों में सच्चाई रखता है। दौलत और शोहरत से ज्यादा कीमती होते हैं अच्छे रिश्ते और नेक कर्म। इसीलिए हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक इंसान की बड़ी पहचान है। दुख कितना भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन दुख को आप धीरे धीरे चीजों के साथ बदल कर खुशियां पा सकते हैं। तो चलिए गीतों का सहारा भी लेते हैं, जब दिल उदास हो, मन उदास हो, सुनते हैं ये गीत रफी साहब की आवाज में। फिल्म है कश्मीर की गली।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए। अपनी आंखों को रखो पुश्त की जानिब अपने, जो करे वार उसी वक्त दबोचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए।

अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया। पास अपने जो नया कोई फसून साज आया, हो रहे उसके हमें याद तेरा नाज आया, याद तेरा नाज आया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ अरुणिमा। आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। याद में तेरी कल अश्क बहाना होगा, कल तेरा शहर भी छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले।

और देखिए चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ ही चुके हैं। अरुणिमा धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ है, तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हेमंता की आवाज में, फिल्म है 16 साल। लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत खूब कहा है कि आईने का साथ प्यारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। आज कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। चलिए सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत हेमंता की आवाज में।

0: जमाने भर
1: और इसी गाने के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक. सुरभि को दीजिए इजाजत. 5:10 पर भोर सुहानी में एक बार फिर होगी हमारी मुलाकात. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमीनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में

0: भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयोर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermony, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार। सुबह का समय हमें बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज से

उत्साह के साथ उठिए और आज के दिन को अपनाइए। जैसे हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, वैसे ही जिंदगी भी हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया अवसर देती है।

भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जिंदगी में सुख और दुख दो मेहमान की तरह हैं, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराना सीख लेता है, आगे बढ़ना सीख लेता है, वही इंसान जीवन का असली विजेता होता है। तो हर पल को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर पल, हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाता है और आपके दिल का आलम भी ठीक रखता है।